और भाई आए कपा कपा दिबा लबा मिन्या लुंदा तिनु बक बुआ कबा पंका अंगेन नारगा aek nyumba ujan tekunalian nabuh nganyaya.